0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है यहाँ की पहचान खेलकूद से है तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: चांदीपुरा वायरस एक गंभीर
3: कार्यक्रमना समापनमा सांभळीए सुमन कल्याणपुरना स्वरमा मीराबाईनी आ रचना।

जांबवान, नलनील, सुग्रीव, विभीषण आदि के विदा हो जाने के बाद भी बालीपुत्र अंगद अयोध्या और श्री राम की सेवा छोड़कर विदा होना नहीं चाहते थे, किंतु श्री राम ने समझा बुझाकर अपने अनन्य प्रेम स्वरूप मणिमाला तथा सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर उन्हें विदा दी। भरत और शत्रुघ्न के साथ लक्ष्मण उन्हें विदा करने चले तो वियोग की इस घड़ी में अंगद बार बार मुड़कर इस प्रत्याशा से देखते हैं कि प्रभु कदाचित उनकी व्यथा समझ उन्हें अयोध्या में रहने की अनुमति दे दें। हनुमान ने सुग्रीव के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, मैं 10 दिनों तक यहाँ प्रभु सेवा में रहूंगा, उसके बाद आकर आपके दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने पुण्य राशि हनुमान को अयोध्या में रह जाने की अनुमति दे दी। ढेर सारे उपहार देकर अत्यंत प्रेम से श्री राम ने निषाद राज गुह को विदा किया। कहा, हे मित्र, तुम भरत के समान मेरे भाई हो, अयोध्या आते रहना, मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म का पालन करना।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री को रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The new

0: हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप

0: इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
1: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sanjay Mattu. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, The stations incorporate

0: बाजू में ब्रजवाणी करे ने सजो आए हिकिड़ो स्थल आहे त हिन ब्रजवाणी में आए रहिया आहियूं ढोल मथे रांदि रमंदे रमंदे हिन मथे पुठियां सतियूं ठही वियूं हुयूं अने हीअ रवेची जो पिणु ॿ महिमा आहे रवेची जो पिणु वॾो मेड़ो भराइजे थो हीअ रवेची जो मंदरु आहे पोइ मुमाए मोरा हाणे मुमाए मोरा पाण वटि चारि पंज मुमाए मोरा आहियूं हिकिड़ो वागड़ में आहे हिकिड़ो नखताणा तालुके में आहे हिकिड़ो भुज तालुके में आहे अने जेको मोमाया एले महामाया महामाया जेको माता जी ठही विया ई मोमाए मोरा जा पिणु मंदर पिणु घणे टेकाणी इन जा पिणु यात्रा धाम इन जा पिणु मेड़ा थियनि था पोइ नेत्रे वारा माता जी जोग मैया त नेत्रा नखताणा तालुके जो गाम आहे ऐं बाजू में अबड़ासा तालुके जो बांडिया आहे हिन पासे बांडिया अने हिन पासे नेत्रा हिन में जोग मैया जो मंदरु आहे गाम थी वाइबरा डूंगर जी निकिरी नंढड़ी भेट आहे हिन मथे जोग मैया जो मंदरु आहे अने ई चवाजे थो की जोग मैया अने आसापुरा मां ई ॿ साॻियूं भेणियूं हुयूं एले माता जे मड़ वञे हुनखे जोग मैया पिणु वियो खपे अहिड़ो हिकिड़ी आस्था जो हिकिड़ो अहिड़ी मान्यता आहे बाजू में गटशीशा हिन में अंबा मां जो मंदरु आहे त हिन जो पिणु ॿ महिमा आहे दर महीने जी पूनम जो मंगलवार जो हुन पिणु भक्त भिगा थियनि था अने ई अंबा मंदर जो विकास कंदड़ चंदू मां करे ने हिकिड़ा लोहाणा सदग्रस्त जी धी इन पुठियां ज आखी ज़िंदगी बिताए वेंदो अने ई चंदू मां पिणु चंदू मां चवाजे था जीअं जगदम्बा खे मां चवाजे थी ते अंबा मंदरु गटशीशा में पिणु आहे अने ॿियो अंबा मंदरु गोधरा में पिणु बणियो आहे अने ई जैन समाज बणाए हीअ त मंदरु ॿ दर्शनीय आहे ॿ सुंदरु आहे त हीअ बि पंहिंजो यात्रा धाम आहे पोइ पिंगलेश्वर हीअ असांजे अबड़ासे में आहे अबड़ासे में नलिया आहे त नलिया थी पिंगलेश्वर वञा जे दरिया कांठे आहे अने पिंगलेश्वर दरिया जो कंधो पिंगलेश्वर महादेव जो मंदरु आहे हीअ पिणु ॿ नेरे जहिड़ो आहे उतां नूं हीअ अबड़ासे जी सॼी कंधी आहे दरिया जी कंधी चालू थिए थी बेदी नंढी वॾी छछी अरिखाणा पोइ असांजो हीउ पिंगलेश्वर जखऊ हीउ मिड़े सॼो दरिया जो कंधो आहे हिन में पिंगलेश्वर महादेव हीअ पिणु ॿ रमणीय स्थल आहे पोइ पंहिंजे कच्छ में जेको जैन यात्रा धाम आहिनि हिन में भद्रेश्वर त भद्रेश्वर की जी त पंचतीर्थी हीअ पिणु ॿ प्रख्यात आहे वांकी पतरी बहुतीर जिनालय नलिया जखऊ सुथरी कुठारा तेरा हिन मिणी गामे में ॿ सुंदर नक्शी काम वारा देरासर आहिनि अने अमुक देरासर ॿ झूना आहिनि हिन जी मनोहर कोतरणी हिन में जेको मूर्तियूं विहारे में आ वियूं आहिनि अने ओॾां जैन लोको तरफ़ थी हिन जा उत्सव मल्हाए में अचे था प्राणीअ जे दया भाव जा कम थिए था माण्हूअ जी सेवा भाव जा पिणु कमु थिए था अहिड़ी रीति जेको मुस्लिम बिरादर आहिनि त मुस्लिम बिरादर जे माटे पाण मडई में नूरानी मज़ार पोइ हाजी पीर करोल पीर बुखारी पीर ग़ुलाम शाह अली पीर माई बीबी तकिया पीर जंगी पंजोरा पीर बचाउ लाकड़िया पीर अने अहिड़ा असां वटि घणे पीर जूं जॻहियूं हुई अने हिन में हाजी पीर जो ॿ महिमा आहे की हाजी पीर जेको आहे इन जी गांइ खे बचाए लाइ करे अने पंहिंजी शहीदी वरे घणो त हाजी पीर खे अॼु तमामु क़ौम मञे थी हिंदू पिणु मञे था अने मुस्लिम बिरादर पिणु मञे था तमामु क़ौम हिन खे मञे था हाजी पीर जो करोल पीर जो बाजू में भाकर साह जो भोइरो आहे इन ओॾां पोइ मेड़ा मलाखड़ा थियनि था पोइ बुठी पीर गर्शीशा में माई बीबी जो पड़ माई जो पड़ एॾां भुज तालुके में जाए पोइ ग़ुलाम शाह अली पीर बुखारी पीर मुंद्रा में मुंद्रा जे शहर में बुखारी पीर आहे पोइ तकिया पीर जंगी बचाऊ तालुके में पंजोरा पीर बचाऊ में लाकड़िया पीर लाकड़िया में वाड़ा पधर में वाड़ा पीर अबड़ासे तालुके में वाड़ा पधर करे ने गाम आहे पोइ हेॾां भवानी पर जी बाजू में लाल छता पीर इन जी पिणु दरगाह आहे अहिड़ी रीति असां जूं इहे मुस्लिम बिरादरी जूं पोइ घणेई जॻहियूं हुई जैन जा पिणु यात्रा धाम आई हिंदू जा पिणु यात्रा धाम आई अने हिन यात्रा धामे में जेको भलाई जा कमु थियनि था छोपे के चरो वेझे में अचे थो मांदे माण्हूअ जी सेवा थिए थी माण्हूअ जो अन्न क्षेत्र हले थो लंगर हले था लखपत में पिणु सिख लोको जो गुरुद्वारो आहे त अहिड़ा पिणनि जी अहिड़ी भलाई जा घणे कमु थिए था त यात्रा धाम ही पंहिंजे माण्हू खे भेरो करे था अने माण्हूअ में जेको थोरी घणी पिणु नफ़रत वे त अहिड़े यात्रा धामे में वञी शांती से हीउ माण्हू भॻवान जो ध्यानु धरे क मालिक जी इबादत करे तंहिंजे मन में जा वेर नफ़रत नेगेटिविटी पिणे निकिरी वञे था अने अहिड़ा यात्रा धाम ई खरेखर पंहिंजे जीवन जी पाठशाला हुई हिन में जा पंहिंजे जीवन में इंसान खे इंसान थिए लाइ करे कुरो कयो खपे कहिड़ियूं आदतूं रखियूं खपे कहिड़ियूं आदतूं छॾियूं खपे इन मिणी जो शिक्षण ही यात्रा धाम ॾिए था अने अहिड़ो विषय आकाशवाणी मूंखे अॼु ॾिने हिन जे माटे ऐं आकाशवाणी जो ख़ूब ख़ूब आभार मञा थो अने आऊं एटले की डॉक्टर रमेश भट्ट रश्मी हीउ मुंहिंजी जेको ॻाल्हि कई इन में मुझी जानकारी अने माहिती प्रमाणे ई गाल कई है छता केदा भूल चोक वे त इधर गुजर करी जा नमस्कार
1: रमेश भाई पाके हड़ी लाट मजे जी माहिती देना खरेखर बहुज मजा आवई अने घणे एड़ा यात्रा दा थड वा पांजे कच्छ जी अंदर वा पण जो इतरो उंडाण पूर्वक यो इतिहास पांके खबर न हुई त रमेश भाई जो हन जे आकाशवाणी जे भुज के अंदर त आऊं गच गच आभार व्यक्त करा थी अने बियो को पांजे आकाशवाणी जे केंद्रतानू पांजो हलो करियूं गाल पांजा रियाण अने घणे मेड़े बाबी ने जा बोलेड़ा घणे कच्छी कार्यक्रम प्रसारित थियन था अने पांजी कच्छ जी जो को लोक कला आए पांजे कच्छ जी भरत कला आए स्थापत्य कला इन मणि जा लाट मजे जा आजा आके जो को विषय सुन आई आके जो को माहिती खपे थी ई असी खणी ने अचो था तो पांजे कच्छ जी अंदर ही पां जो को कार्यक्रम रजो करियो था हलो करियूं गाल रियाण इन में फकत कच्छ में न पण गुजरात गुजरात बारा मुंबई जड़े शहर में पण बड़े यूट्यूब त पांजो उपरांत जो पांजो जे मोबाइल जी अंदर क्रोम में गूगल में वनी ने भुज एयर लाइव लखी ने घणे मणे श्रोता जने अड़ाई जो को पांजो ही कार्यक्रम सोणे ता अने पंजो अभिप्राय पण मां के हलाया आया तो हलो पांके अभिप्राय हलाइंदल पांजा मुंबई जा अंजलि बेन गोर पोए ढोरी जा खुशबू बेन अने माधापर थी शिवानी बेन गोर पांके पंजा अभिप्राय हलाया आया तो अनी के पण जरा पां सुणो
2: हेलो मुझो नाम गायत्री अंजलि विजय गोर है आउं डोंबिवली मुंबई में रहती आकाशवाणी में प्रसारित थींदल जो को हलो करियूं गाल अने रियाण ई प्रनियमित रीते आउं सुणा थी अने इनमें मूंखे बहु मजा अचे थी इन जे अंदर कच्छ जे इतिहास जी सरस गालियूं ई पांजा कृपा बेन नाकर द्वारा प्रसारित थिए थी अने इनमें कच्छ जो इतिहास अने भरत काम जी गालियूं पण कृपा बेन बहु सरस रीते वणी गने था अने गए एपिसोड में जो ई मणे गालियूं करया मां ई सुणी ने ई मूंखे बहु मजा आवई अने असां खे जाणेला मिलियो के पांजो कच्छ जो इतिहास केतलो सुंदर अने विविधता थी भरेलो आहे थैंक यू सो मच कृपा बेन नाकर
3: मुझो नालो खुशबू आए आऊं ढोरी में प्रिंसिपल आई आऊं आकाशवाणी भुज जो हलो करियूं गाल ने रियाण प्रोग्राम सुना थी हेवर कच्छ जी भरत कला जी लाट माही थी कृपा बेन डने से मुखे तो मजा अची वही
4: मुझो नाम शिवानी रमेश चंद्र गोर आए आऊं रामनगरी प्राथमिक शाला नवावास माधापर में शिक्षक जी फरज बजाया थी आकाशवाणी भुज मजा थी जे प्रोग्राम अचेन था ए आऊं सोना थी अने में खास करी ने हलो करियो गाल जे कृपा बेन रजू करी है था ई सोणी जी मुके बहुज मजा अचे थी ई प्रोग्राम में हेवर फिजियोथेरापी जी सरस माहिती दने में आवई भी साथे साथे आकाश दर्शन जी पण मस्त माहिती नरेंद्र भाई द्वारा दने में आवई भी साथे रियाण कार्यक्रम जा कच्छी भजनता पाके भक्ति में लीन करिए ता खरेखर हिमड़े कार्यक्रम सोने जी खूब मजा अचे थी
1: पांजे हन कार्यक्रम के सोणधल अने पांजो ही रियाण कार्यक्रम आए ई पा हमेशा प्रयत्न करों ता कि भई पांजा जो को श्रोता गने इनके जेड़ी माहिती गमे जी गमे थी इन्हीं की केड़ी केड़ी माहिती अना खपे थी ई पण पा खणी ने अचों ता हैर पांजा कृषि उद्योग ही है पांजे कच्छ जी कला आए हैर टूंक समय में पांजो कार्निवल जो पण आयोजन थियो तो ई मड़ीज गालियों एड़ी हुई के जो को पांजे कच्छ जी अंदर कच्छ जो गौरव हुई है अने ही चेला बनु क रियाण कार्यक्रम जी अंदर पां पांजा जटला पण श्रोता गने इन्हीं के जो को माहिती खपे थी इन जी पां ही कार्यक्रम जी अंदर इनके पां समावेश करो था अने ही नरला बनु तो पांजो कच्छ है ई इटली मेरे विविधताएं थी भरे लो आए क पां कच्छ जी अंदर जटला की पण पां कार्यक्रम हुए था पांजे कच्छ जी जटली पण संस्कृति हुए थी इनके मणि के पां पांजे ही रियाण कार्यक्रम जी अंदर गनीचो जो प्रयत्न करो था સિવાય પણ પાંચ શ્રોતાગણ મળી ગયાનું લાટ મજે જા આજે સૂચન પણ અસી મંગો હતા કે ભાઈ આ કે કન પ્રકારજી વાર્તાલાપ કન પ્રકારજી માહિતી આ કે ખપે હતી તો પાંચ રહેણ કાર્યક્રમ મેં એ મળે જ ગાલ્યું ખણીને અચું તા અને ટૂંક સમય મેં જ પાંચ જેતરા પણ શ્રોતાગણ આ કે ફોન ઇન જા નંબર પણ ડનેલા જ અહીં

अने फोनिन ते पण आई आ जो जुको जुको आ के सोने जी इच्छा थिए थी पर कच्छी हुए गुजराती हुए ई मड़े अभिप्राय आई इन ते देई सको ता अने ई पांजे कच्छी जो सजो प्रोग्राम आए कोई पांजा हलो करियूं गाल वे रियाण कार्यक्रम वे बाबी ने जा बोल में एले ई फोन इन ते आके जुको जी की पसंद हुए इमड़े आई चई सको था जी पा हेव डॉक्टर रमेश भट्ट रश्मि पा के पाजे कच्छ जा जुको यात्रा धाम ही अने ही नेला वनु तो भुज स्वामीनारायण मंदिर थी करी अने नारायण सरोवर सुधी पांजा मड़े ज कच्छ जी अंदर अने माता आशापुरा जा बेसना ता पांजा साख सात भुज में आई तो ई मड़े ज पांजा यात्रा धाम आई ई कच्छ जो हुकड़ो ही नेला वनु तो मुगट जी अंदर जड़ेला हीरा आई हर एक यात्रा धाम हंटाने तो पाँ जो समय जो थोड़ी मर्यादा हुई एले पाँ मणी जा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा अंश गड़ासूँ खुले के हीन लाऊँ तो नंढा नंढा पाँ जा 150 थी मथे पाँ जा यात्रा धाम थी रहे पर पाँ हंटाने मुख्य मुख्य गड़ा के जोको वधारे परता प्रचलित आई जोको बाहर जी प्रजा के अने खास करीने पांजे प्रवासन विभाग द्वारा पण जिनके वधारे विकसित करे में आया आई अड़ा पा मड़े पाँजा यात्रा धाम के हंजी अंदर समाय जो प्रयत्न कराया अन सिवाय पा इन तो पाँच भुज जी अंदर कतरा मड़िया जिनके राम कुंड है राम कुंड है ये पड़ो नहर जो यात्रा धाम है जी रामधून है जो को वर्षो थी असि नंढड़ा वासूँ तड़े थी में अखंड रामधुन हल्दी हुई तो ये पाँच नेर जो स्थल है बाजू में राम कुंड है ये पाँच नेर जो स्थल है भुज जो स्वामीनारायण मंदिर है ये तो अज फकत भुज न बस सजे गुजरात के अंदर ही स्वामीनारायण मंदिर है इन जो हंटाने दबदबो है इन जी मणे माड़ू की नेरे की इच्छा पण हुए थी अड़ा पाँ गुजरात जन तो अडड़क हई जिन जो पा आंगड़ी के वेढ़े पर घड़ी न सकूँ अतरा पाँजा यात्रा धाम आई एट्ले माता जो मठ है ई तो जी कहो ना मुंबई अने देश परदेश थी पण माड़ू नवरात्रि हुए चैत्र नवरात्रि हुए कि आसो नवरात्रि हुए माड़ू ऊ माता के मठ से दर्शन कर ला कोई पगे अचे जी मानता रखें था कोई साइकिल से अचे जी मानता रखें था एले जड़ी जिनकी श्रद्धा हुए जड़ो जिनकी इच्छा अने सपने की पूर्ति हुए इन प्रमाण ही माता के दर्शन ला करीने आशापुरा जो पांजो माता जे मड ई वने ता एन ज प्रमाणे पांजा बच्चा हुआ है अबड़ासो आए लखपत आए गांधीधाम आए अंजार आए मणी ज जगह ते पांजा ही जोको यात्रा जा स्थल आई कच्छ जा ई प्रख्यात आई एले कच्छ जो कोई पण अड़ो तालुको नाए जडा आकी न थिए भैया जडा हडाकी नेर जड़ो आए न आके कच्छ ज खाली फरणू है ते चार थी पांच दिन लगी हुए एटला तो पाँच यात्रा धाम है ब्या तो नेरे लाय घने मणे अड़ा स्थल ही कि जिनमें कीक ने कीक पांजे राजे रजवाड़े जो इतिहास रेलो आए एटले पांजो रिहाण कार्यक्रम आए ई हमेशा कच्छ जी संस्कृति के कच्छ जी धरोहर के ई उजागर करे जो प्रयत्न करे तो अने ई पांजो रियाण कार्यक्रम जी अंदर आजा गमतेला विषय के आजी उपयोगी माहिती के कोई कोई पण प्रकार जी माहिती वे कृषि जी माहिती वे के कच्छ जे स्थापत जी माहिती वे के कच्छ जी कला जी माहिती वे ई मणिज माहिती के असी ही रियाण कार्यक्रम जी अंदर समाईंदासूँ जेथी करीने पांजे कच्छ जी हकड़ो गरिमा आए पांजो कच्छ जो इतिहास आए ई पंड में जो वडी विरासत के लकाईने वेठो आए इन जे खोड़े में पांजे राजे रजवाड़े जो सजो जीवन जो इतिहास पांजे ही कच्छ जी नंढे नंढे धर्म स्थान के ते आए पांजो कच्छ जी अंदर मही नरला वनो तो तालुके तालुके ओछे में ओछा डोता प्रसिद्ध एड़ा यात्रा धाम हुंदा के जोको माड़ू के थी है कि अन पुठिया की इतिहास न हों मणी ज पुठे इतिहास हुए तो नेसे पण वडा वडा इतिहास हुए था एले ही पांजे कच्छ जो गौरव है कि पांजे कच्छ जी अंदर एटला मड़े यात्रा धाम आई कि जैके वर्ल्ड हेरिटेज में पण विचार ते अचे तो कि भई पाँ के हिनमजनु कन थान के पाँ कें अंदर समायणो एटले आई कच्छ जा जोको पण
आके साहित्य आए, कला आए, संस्कृति आए, इतिहास आए, राजा रजवाड़ा आई, भरत काम आए, मोची काम जी कला आए, मोती काम आए, आके जी खेती सुदांत कच्छ में कई कई थिए थी ई माहिती पर आके गणेश जी इच्छा हुए तो असा के फोन इन ते जरूर थी जणाई जा।

0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मा गुजरात ने नेतृत्व पावे छे। वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहियां निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मा रजू थई भविष्यनी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमा माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्यु। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्यु छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नु प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नु केंद्र स्थान।
1: आईटीआई मा प्रवेश मेळवाथी वंचित उमेदवारो माटे प्रवेश मेळवानी वधु एक तक। प्रवेश सत्र 2026 अंतर्गत बीजा राउंड माटे आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम परथी ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 19 जुलाई थी 22 जुलाई 2026 सुधी भरी शकाशे।

0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे। वडा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहींया निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मा रजू थई भविष्य नी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमा माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्यु। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्यु छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नु प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नु केंद्र स्थान।
1: आईटीआई मा प्रवेश मेळवाथी वंचित उमेदवारो माटे प्रवेश मेळवानी वधु एक तक। प्रवेश सत्र 2026 अंतर्गत बीजा राउंड माटे आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम परथी ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 19 जुलाई थी 22 जुलाई 2026 सुधी भरी शकाशे। आईटीआई मा प्रवेश मेळवाथी वंचित उमेदवारो माटे प्रवेश मेळवानी वधु एक तक। प्रवेश सत्र 2026 अंतर्गत बीजा राउंड माटे आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम परथी ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 19 जुलाई थी 22 जुलाई 2026 सुधी भरी शकाशे।
0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे। वडा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना

0: सर्जन? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे। वडा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहींया निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मा रजू थई भविष्य नी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमा माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्यु। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्यु छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नु प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नु केंद्र स्थान। एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे। वडा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहींया निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मा रजू थई भविष्य नी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमा माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्यु। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्यु छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नु प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नु केंद्र स्थान। एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे। वडा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहींया निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मा रजू थई भविष्य नी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमा माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्यु। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्यु छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नु प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नु केंद्र स्थान।
1: आईटीआई मा प्रवेश मेळवाथी वंचित उमेदवारो माटे प्रवेश मेळवानी वधु एक तक। प्रवेश सत्र 2026 અંતર્ગત બીજા રાઉન્ડ માટે આઈટીઆઈ ઓનલાઈન એડમિશન સિસ્ટમ પરથી ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ 19 જુલાઈ થી 22 જુલાઈ 2026 સુધી ભરી શકાશે। આઈટીઆઈ માં પ્રવેશ મેળવવાથી વંચિત ઉમેદવારો માટે પ્રવેશ મેળવવાની વધુ એક તક। પ્રવેશ સત્ર 2026 અંતર્ગત બીજા રાઉન્ડ માટે આઈટીઆઈ ઓનલાઈન એડમિશન સિસ્ટમ પરથી ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ 19 જુલાઈ થી 22 જુલાઈ 2026 સુધી ભરી શકાશે।
2: આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી આપ સાંભળી રહ્યા છો કાર્યક્રમ લોક સંગીત। કાર્યક્રમના સમાપનમાં સાંભળીએ કેતકીબેન મહેતાના સ્વરને।

श्रेणी, रेडियो फीचर्स, दस्तावेजी श्रेणी, वार्ता कथन, ऑडियो सीरीज, इनोवेटिव फॉर्मेट आधारित कार्यक्रमों की श्रेणी, पॉडकास्ट सीरीज, क्विज कॉम्पिटिशन, संगीत आधारित कार्यक्रमों जेमा शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम संगीत अने लोक संगीत कार्यक्रमों AIR ब्रॉडकास्ट कोड तथा कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग कोड ने अनुरूप होवा जोईए। आ कार्यक्रमों हिंदी, अंग्रेजी के निर्धारित प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करवाना रहेशे। दरेक एपिसोड नी अवधि अपवादरूप परिस्थितियों ने बात करता 14 मिनिट अथवा 28 मिनिट नी होवी जोईए। NIPP हेठळ तैयार थयेल योग्य कार्यक्रमोनुं प्रसारण प्रसार भारती आकाशवाणीना निर्णय मुजब आकाशवाणी नेटवर्क जेमा राष्ट्रीय, प्रादेशिक અને સ્થાનિક રેડિયો સ્ટેશનો પર થઈ શકે છે। વધુ માહિતી માટે પ્રસાર ભારતી અને આકાશવાણીની વેબસાઇટ prasarbharti.gov.in/NIPP અથવા akashvani.gov.in/files/nipp.pdf ની અવશ્ય મુલાકાત લો। જાહેરાત પૂરી થઈ અને હવે સમજશો દીવાના મુસ્સા નહીં ફિલ્મનું ગીત। કલાકારો છે અમિત કુમાર અને સાધના સરગમ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ફિલ્મ સંગીતના કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળશો ઉદિત નારાયણ અને સાથીઓએ ગાયેલું દિલ ફિલ્મ ગીત।

0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे। वडा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहिया निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मा रजू थई भविष्य नी ब्लू प्रिंट स्ट्रेटेजिक रोड मैप 2030 जेमा माननीय मुख्यमंत्री श्री ए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्यु। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्यु छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नु प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नु केंद्र स्थान।
1: અને હવે સાંભળશો રૂપકુમાર રાઠોડે ગાયેલી તાહિર તરાશની આ ગઝલ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
1: कार्यक्रम ना अंतिम संभाषो हरिहरने गायली विजय सिंहानी आ गजल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शब्दों छे मणिलाल देसाईना, कलाकार निरुपमा शेठ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरि धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एक का ये प्रक्षेपण भारत के उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Prime Minister Narendra Modi congratulated Skyroot Aerospace for the achievement. Mr. Modi spoke to Team Skyroot by phone and lauded the historic space feat. The Prime Minister also invited Team Vikram 1 to meet him.
4: Dhawan, Bharat aur puri team, bahut bahut badhai. Do kaam kiye. Ek to aasman mein manaye paudhe gaad diye hain aur dusra zameen mein bhi us roots ko aapne majbooti di hai jo desh ke naujawanon ko आगे आने की प्रेरणा दे।

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भूज प्रस्तुत है फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम जय भारती।

भर्ती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज है 18 जुलाई। भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि। 18 जुलाई 2012 को हमारे बीच से विदा लेने वाले राजेश खन्ना जी को हम सब की ओर से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि। आज का जय भारती कार्यक्रम राजेश खन्ना के नाम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मन्नाडे की आवाज में आनंद फिल्म के इस गाने से, जिसे लिखा है योगेश ने और संगीत से समर है सली चौधरी ने।

0: कभी तो हंसाए।
1: दोस्तों, राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का बचपन का नाम जतिन खन्ना था। बचपन में राजेश खन्ना को काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब होता है छोटा बच्चा। 10 साल की उम्र में ही राजेश खन्ना थिएटर से जुड़ गए। उन्हें बोंगो और तबला बजाना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। राजेश खन्ना जी को एक्टिंग से बहुत प्यार था। वो कॉलेज के दिनों में थिएटर भी करते थे और स्टेज शोज से भी जुड़े थे। तो आइए सुनते हैं गुलजार का लिखा, हेमंत कुमार का संगीतबद्ध किया खामोशी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, राजेश खन्ना ने अंधायुग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया था, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा था, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई तो मामा ने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर

राजेश खन्ना रख दिया। हिंदी सिनेमा को चाहने वाले सभी लोग राजेश खन्ना को काका के नाम से जानते थे। बॉलीवुड में एक कहावत थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। ऐसे ही वो सुपरस्टार थोड़ी बने थे। तो आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया मर्यादा फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में।

दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना मैं चाहूंगा। राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का बहुत शौक था। वो ऑडिशन देने भी स्पोर्ट्स कार में ही जाते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी जहां फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी गाड़ियां रखते थे। कभी कभार जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती थी तो वो कहते थे, अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी मुझे रोल दे देंगे तो मैं उसे भी पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। तो आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया, नमक हराम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी 1966 की आखिरी खत। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई थी। दोस्तों, यहां पर एक बात बताना मैं जरूर चाहूंगा कि फिल्म आराधना का पहले नाम था वंदना। ठीक इसी कहानी पर एक और फिल्म लिखी गई थी जिसका टाइटल एक श्रीमान एक श्रीमती था। जब ये बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्ति सामंत को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में कहानी में कुछ बदलाव किए गए, डबल रोल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके बाद आराधना बनी। फिल्म आराधना का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया था। लेकिन आपको शायद पता होगा कि गाने में राजेश खन्ना की शूटिंग सड़कों पर की गई थी, वहीं शर्मिला टैगोर ने स्टूडियो में गाने के हिस्से को शूट किया था। दरअसल जब इस गाने को फिल्माया गया तो शर्मिला टैगोर किसी कारणवश शूटिंग सेट पर नहीं पहुंच पाई थी। इसी वजह से राजेश खन्ना के हिस्से को सड़क पर शूट कर दिया गया, वहीं बाद में एक स्टूडियो में शर्मिला टैगोर के हिस्से को भी शूट किया गया, जिसके बाद में एडिट करके दर्शकों के सामने ये गाना लाया गया। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, आवाज किशोर कुमार की।

दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना को हिल स्टेशन से बहुत प्यार था। यही वजह थी कि कश्मीर को उनका दूसरा घर माना जाता था। जब भी वो कोई फिल्म करते थे तो डायरेक्टर से जरूर कहते थे कि फिल्म का कोई एक गाना हिल स्टेशन में ही शूट हो। यही वजह है कि उनकी अधिकतर फिल्मों में कोई एक गाना जरूर हिल स्टेशन पर फिल्माया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा कि सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी भी फिल्म में नजर आते थे तो उनकी खास फरमाइश होती थी कि उनकी फिल्मों के गाने किशोर कुमारी गाए। यही वजह थी कि 1987 तक राजेश खन्ना के फिल्मों के गाने किशोर कुमार ने ही गाए। दोनों ने 132 फिल्मों में एक साथ काम किया था। फिल्म दुश्मन का एक गाना था, वादा तेरा वादा। जब इस गीत के लिए किशोर कुमार को चुना गया तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि उनसे बेहतर इस गीत को रफी साहब गा सकते हैं। जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने किशोर कुमार को बुलाया। किशोर कुमार ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और कहा कि अगर तुम ये गाना नहीं गाओगे तो इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाएगा। राजेश खन्ना के इस जीत के आगे किशोर कुमार को झुकना पड़ा और आखिरकार उन्होंने इस गीत को गाया।

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत 1966 की फिल्म आखिरी खत से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1969 की फिल्म आराधना से मिली, जिसमें उनके रोमांटिक अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

इसके बाद आनन, कटी पतंग, सफर, हाथी मेरे साथी और बावर्ची जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 1969 से 1971 तक उन्होंने लगातार 15 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी, जो एक रिकॉर्ड है। उनके डायलॉग बाबू मोशाय और गाना मेरे सपनों की रानी आज भी लोग याद करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने कैरियर के दौरान 3 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता था। 1971 की फिल्म सच्चा झूठा के लिए, 1972 की फिल्म आनंद के लिए और 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राजेश खन्ना जी को भारत सरकार द्वारा 2013 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। तो आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

जय भारती। ये था फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम। प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भुज केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता

0: भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम वन भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम वन में तीन ठोस प्रणोदक चरण और एक तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: और भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम वन की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
0: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
5: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
5: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों
6: विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक

0: विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल क्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। सिंधी ख़बरुनि सां गॾु मां दीपा गुरनानी। अवल अहम ख़बरूं। भारत जो पहिरियों खानगी कंपनीअ द्वारा तयारु आर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्री हरिकोटा जे सतीश धवन अवकाशी मर्कज़ तां कामयाबीअ सां छोड़ियो वियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ इन आज़माइश वास्ते स्काई रूट एरो स्पेस जी टीम खे मणे मुबारकूं ॾिनियूं ऐं इन खे भारत जी अवकाशी यात्रा में हिकु अहम लम्हो ॼाणायो। हिफ़ाज़ती मंत्री राजनाथ सिंह चयो, आतंकवाद खे कतई न बर्दाश्त करण जी भारत जी नीति न सिर्फ़ हिकु बयान आहे बल्कि सख़्त कार्यवाहीअ जो इशारो बि आहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रामनगर देहरादून जी पहिरीं सिधी एक्सप्रेस रेल गाॾीअ खे साई झंडी ॾेखारे रवानो कयो। आधार ऐप जो डाउनलोड 4 करोड़ खां पार। डिजिटल सुञाणप शेवाउनि में वधियो आवाम जो विश्वास। ख़बरूं तफ़सील सां। भारत जे ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 जी कामयाबीअ सां आंध्र प्रदेश जे श्री हरिकोटा में आयल सतीश धवन अवकाशी मर्कज़ तां आज़माइश कई वई आहे। इहा आज़माइश अॼु मंझंदि 12:05 ते थी। इन खे हैदराबाद जी खानगी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस तयारु कयो आहे। हिकु रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐं विज्ञानिक तोड़े तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह इन हासिलात वास्ते स्काई रूट एरो स्पेस खे मणे मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि। प्रधानमंत्रीअ चयो त इहा तारीख़ी हासिलात मुल्क जे नौजवाननि खे अॻियां अची नवाचार में योगदान ॾियण लाइ हिमथाईंदी। हुन साहिब चयो,
2: और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सोशल मीडिया पोस्ट में चयो त इहा तारीख़ी हासिलात भारत जी अवकाशी यात्रा में हिकु नओं बाब जोड़ींदी ऐं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ विक्रम 1 जी टीम खे संदसि सां मिलण लाइ नींढ बि ॾिनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विक्रम 1 जी कामयाब आज़माइश खे भारत जे लाइ तारीख़ी हासिलात ॿुधायो आहे। गृह मंत्री अमित शाह ऐं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विक्रम 1 जी कामयाब आज़माइश ते स्काई रूट एरो स्पेस जी सराहा कई। आधार ऐप खे 4 करोड़ खां वधीक दफ़ा डाउनलोड कयो वियो आहे, जेको सहजो ऐं डिजिटल सुञाणप शेवाउनि में अवाम जे वधंदड़ विश्वास खे ॾेखारे थो। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐं सूचना तकनीक वज़रात ॿुधायो त इन ऐप ज़रिए 11 लख खां वधीक एड्रेस ऐं 39 लख मोबाइल नंबर माण्हू अपडेट करे चुका आहिनि। वज़रात चयो त आधार ऐप जो वधंदड़ इस्तेमालु हिकु

0: जाइ ते सभई सहूलियतूं मैसर करण वारे डिजिटल प्लेटफॉर्म तौर उसरण जो इशारो ॾे थो। कार्मिक लोक शिकायत ऐं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह चयो त शिकायत निवारण जो दायरो शिकायतुनि जे निपटारे ताईं महदूद न हुअणु घुर्जे। तोड़े पेंशनार्थियुनि जी ख़्वाहिशुनि ऐं ॻणितियुनि जो हल ॻोल्हण ते ध्यानु मर्कोज़ हुअणु घुर्जे। डॉक्टर सिंह चयो त पेंशन सां लाॻापियल तकरारुनि जो हल इंतिज़ामी तौर ते थियणु घुर्जे त जीअं पेंशनार्थियुनि खे अदालत वञण लाइ मजबूर न थियणो पवे। हुन साहिब अॼु नई दहिलीअ में पेंशन सां लाॻापियल मुक़दमेबाज़ीअ ते ॿिएं राष्ट्रीय कार्यशाला खे ख़िताब कंदे इहा ॻाल्हि चई। ही ख़बरूं तव्हां आकाशवाणीअ तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। पार्लियामेंट जो चौमासे वारो इजलास 20 जुलाई खां शुरू थींदो। चौमासे वारे इजलास खां अवल सरकार सुभाणे सभिनी धुरियुनि जी बैठक कोठाई आहे। बैठक में सरकार सभिनी सियासी धुरियुनि जे सांसदनि खे ॿिन्ही ऐवाननि जी कार्यवाही बहितर नमूने हलण लाइ सहकार जी घुर कंदी। पार्लियामेंट जो चौमासे वारो इजलास सूमर खां शुरू थी 13 ऑगस्ट ताईं हलंदो। इन दौरान केतिरनि अहम बिलनि ते गुफ़्तगु थियण ऐं उन्हनि खे बहाल करण जा इम्कान आहिनि। हिफ़ाज़ती मंत्री राजनाथ सिंह चयो त आतंकवाद खे कतई बर्दाश्त न करण जी भारत जी नीति सिर्फ़ हिकु बयानु कोन आहे, बल्कि इहो आतंकवाद ख़िलाफ़ भारत जी सख़्त कार्यवाहीअ जो इशारो आहे। नई दहिलीअ में अॼु फोर्सिस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह चयो त भारत न सिर्फ़ पंहिंजी सरहदुनि ते ई आतंकवादियुनि ते हमिलो कंदो, पर ज़रूरत पवण ते हुननि जे ठिकाणनि में घुसी बि हुननि खे मारींदो। श्री सिंह चयो त ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी जंग जो हिकु क़ाबिले ज़िक्र मिसाल आहे। श्री सिंह चयो,
1: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चयो त सिहतमंद समाज मजबूत राष्ट्र जो बुनियादु आहे। नई दहिलीअ में अॼु भारतीय तबीबी संघ जे पुरस्कार में श्री सिंह चयो त तबीबी पेशेवर न सिर्फ़ सिहत शेवाऊं फरहाम करे रहिया आहिनि, बल्कि मुल्क जी विकास यात्रा खे बि मज़बूत बणाए रहिया आहिनि। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ऐं उत्तराखंड जे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीअ अॼु वर्चुअल नमूने रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाॾीअ खे साई झंडी ॾेखारे रवानो कयो। इन नई रेल शेवा जे शुरू थियण सां उत्तराखंड ऐं उत्तर प्रदेश विच में रेल राब्तो वधीक मज़बूत बणजंदो। रेल मंत्रीअ वीडियो कॉन्फ्रेंस ज़रिए कार्यक्रम में चयो त इहा रेलगाॾी हफ़्ते में 2 ॾींहं हलाई वेंदी ऐं उत्तराखंड जे कुमाऊं तोड़े गढ़वाल इलाइक़नि विच में बहितर रेल राब्तो मैसर कराईंदी। श्री वैष्णव चयो,
2: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: गुजरात जे अहमदाबाद में आयल हिकु फटाकनि जी फैक्ट्रीअ में ज़बरदस्त बाहि लॻण सां 8 माण्हू अजल जो शिकार ऐं 10 ॿिया ज़ख़्मी थिया आहिनि। इहो हादसो रामोल त्रागर रोड ते मौजूद फैक्ट्रीअ में थियो। असांजे नुमाइंदे ॼाणे त सूचना मिलण सां तुर्त कार्यवाही अमलो ऐं बाहि विसाईंदड़ अमले जी टीम मौके ते पहुती ऐं बाहि विसाइण सां गॾु बचाव अभियान में मसरूफ़ थी। आख़िर में अहम ख़बरुनि ते नज़र विझंदासीं। भारत जो पहिरियों खानगी कंपनीअ द्वारा तयारु ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्री हरिकोटा जे सतीश धवन अवकाशी मर्कज़ तां कामयाबीअ सां छोड़ियो वियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ इन आज़माइश वास्ते स्काइरू टेरो स्पेस जी टीम खे मणे मुबारकूं ॾिनियूं ऐं इन खे भारत जी अवकाशी यात्रा में हिकु अहम लम्हो ॼाणायो। हिफाजती

मंत्री राजनाथ सिंह चयो आतंकवाद के कतई न बर्दाश्त करण जी भारत जी नीति न सिर्फ एक बयान आहे बल्कि सख्त कार्यवाही जो इशारो भी आहे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव रामनगर देहरादून जी पहरी सिद्धि एक्सप्रेस रेल गाड़ी के साई झंडी देखारे रवानो कयो। आकाशवाणी ता सिंधी समाचारन जो इहो अंक ते समाप्त थियो। नमस्ते।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानी रुविदे निमा गागी नादी रुविदे नाना गागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया

0: अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन युफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉक ओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। कच्छ जिल्लामां वरसादनी अछतने ध्याने राखीने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले पशुपालकों माटे खास किस्सामां मात्र 2 रूपिया प्रति किलोना राहत दरे घास वितरणनी मंजूरी आपी। कच्छना पशुपालकों ने 5 पशुओंनी मर्यादामां पशुदीठ दैनिक 4 किलोग्राम घासनुं राहत दरे वितरण कराशे। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दीनदयाल पोर्ट ऑथोरिटी कंडलानी मुलाकात लेने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करी और सौथी झड़पी 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग करवा बदल टीम ने बिरदावी। भूज कलेक्टर कचेरी खाते राज्यमंत्री त्रिकमभाई छांगानी उपस्थिति में योजायेली संकलन समिति की बैठक में धारासभ्योए पाणी घासचारो जमीन संपादन और आरोग्य जेवा लोकहितना प्रश्नों की रजूआत करी। गुजरात में चोमासाना बीजा राउंड वच्चे पण वरसादनी भारे खेंच। कच्छ जिल्लामां सीजननो सरेराश मात्र 3.32% ज वरसाद नोंधायो। सामूहिक आरोग्य केन्द्र दयापर खाते आयोजित केम्पमां लखपत तालुकाना 82 दिव्यांग लाभार्थीओने प्रमाणपत्र आपवानी प्रक्रिया हाथ धराई। जामनगरमां चांदीपुरा वायरसना 2 शंकास्पद केस सामे आव्या। राज्यना 36 तालुकामां आजे हळवो वरसाद पड्यो। सवारे 6 वाग्याथी बपोरना 12 वाग्या सुधीमां वलसाडना धरमपुर अने नाना पोंडामां 1 इंच वरसाद नोंधायो। मत्स्य उत्पादनमां मोटी छलांग लगावतुं कच्छमां आ वर्षे 1,00,000 मेट्रिक टन माछलीनुं उत्पादन थवानी शक्यता। गांधीधाम सरकारी ITI खाते प्रवेश सत्र 2026ना बीजा राउंडनी ऑनलाइन फॉर्म भरवा अने चॉइस फिलिंग करवानी वहीवटी प्रक्रिया हाथ धराई। क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी अने भूज मिलिटरी स्टेशन वच्चे सैन्य जवानोना शैक्षणिक विकास अने विशेष डिप्लोमा कोर्स माटे महत्वपूर्ण शैक्षणिक करार करवामां आव्या। प्रभारी मंत्री कांतिलाल अमृतियाना अध्यक्षस्थाने मळेली जिल्ला आयोजन मंडळनी बेठकमां कच्छना विकास माटे रूपिया 2,302,822 कामो मंजूर कराया। मुख्य समाचार पूरा थया।

श्रोताओं, हवा महल के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का तीसरा और अंतिम।

0: भाग वाचन स्वर है अमरकांत दुबे का।
1: अब तक आपने सुना बंबई के सभ्य समाज की एक रसूखदार प्रभावशाली महिला मिस राधिका जोशी, जो कि बंबई के गवर्नर के साथ अपने निजी संबंधों के चलते बंबई पर लगभग राज किया करती थी, उसे भरी सभा में एक स्थानीय नेता आप्टे बुरी तरह से अपमानित कर देता है। उससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए मिस जोशी उसके घर जाती हैं। वहां पर आप्टे के सीधे सरल स्वभाव और सादे जीवन को देखकर वो उससे प्रभावित हो जाती है। यहाँ आप्टे को भी अपनी इस भूल का एहसास होता है कि मिस जोशी के विषय में पूरी सच्चाई जाने बिना उसने उसे भरी सभा में अपमानित किया। अपने इस अपराध के लिए आप्टे मिस जोशी से क्षमा मांगता है। आप्टे की सादगी और उच्च विचारों को साक्षात देखकर मिस जोशी उससे बदला लेने की बात भूलकर क्षमा मांगने के लिए उसके पैरों में गिर जाती हैं। अब सुनिए आगे। मिस जोशी उनके पैरों पर गिर पड़ी। आप्टे ने उसे उठा लिया और बोले, मिस जोशी ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न कीजिए। मिस जोशी ने गदगद कंठ से कहा, आप इन दुष्टों के हाथ से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं आपकी विश्वास पात्री बन सकूं। ईश्वर साक्षी है कि मुझे कभी कभी अपनी दशा पर कितना दुख होता है। मैं बार बार चेष्टा करती हूं कि अपनी दशा सुधारूं, इस विलासिता के जाल को तोड़ दूं जो मेरी आत्मा को चारों तरफ से जकड़े हुए। मेरा पालन पोषण जिस ढंग से हुआ उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक मालूम होता है। मेरी उच्च शिक्षा ने गृहिणी जीवन से मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। मुझे किसी पुरुष के अधीन रहने का विचार अस्वाभाविक जान पड़ता था। मैं पुरुषों की भांति स्वतंत्र रहना चाहती थी। क्यों किसी की पाबंद होकर रहूं? क्यों अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्ति के सांचे में ढालूं? क्यों किसी को यह कहने का अधिकार दूं कि तुमने यह क्यों किया, वह क्यों किया? अपने माता पिता की आलोचना करना मेरे लिए उचित नहीं। ईश्वर उन्हें सदगति दे, उनकी राय किसी बात पर मुझसे न मिलती थी। पिता विद्वान थे, माता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। उनमें रात दिन वाद विवाद होता रहता था। अपने घर की अशांति देखकर मुझे विवाह से और भी घृणा हो गई। सबसे बड़ा असर मुझ पर मेरे कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल का हुआ, जो स्वयं अविवाहिता थी। मेरा तो अब ये विचार है कि युवकों की शिक्षा का भार केवल आदर्श चरित्रों पर रखना चाहिए। विलास मिरत कॉलेजों के शौकीन प्रोफेसर विद्यार्थियों पर कोई अच्छा असर नहीं डाल सकते। मैं जिस संसार में हूँ उसकी जलवायु ही दूषित है। वहाँ मुझे सभी कीचड़ में लतपत देखना चाहते हैं। मेरे विलासा सख्त रहने में ही उनका स्वार्थ है। आप वो पहले आदमी है जिसने मुझ पर विश्वास किया है, जिसने मेरे साथ निष्कपट व्यवहार किया है। ईश्वर के लिए आप मुझे भूल न जाइएगा। आप्टे ने मिस जोशी की ओर वेदनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मिस जोशी, आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है, केवल परिस्थितियों ने उसे कोहरे की भांति ढक लिया है। अब विवेक का सूर्य उदय होगा। ईश्वर ने चाहा तो कोहरा भी फट जाएगा, लेकिन सबसे पहले उन परिस्थितियों का त्याग करने को तैयार हो जाइए। मिस जोशी ने कहा, यही आपको करना होगा। आप्टे ने चुभती हुई निगाहों से देखकर कहा, वैद्य रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है। मिस जोशी ने कहा, मैं सब कुछ करूंगी। मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊंगी यदि आप पिलाएंगे। कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे? शाम को अवश्य अवश्य आऊंगा। मिस जोशी ने विदा लेते हुए फिर कहा, भूलिएगा नहीं, मैं आपकी राह देखती रहूंगी। अपने इस रक्षक को भी लाइएगा। ये कहकर उसने पालक को गोद में उठाया और गले से लगाकर बाहर निकल गई। गर्व के मारे उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे, मालूम होता था हवा में उड़ी जा रही थी। प्यास से तड़पते हुए मनुष्य को नदी का तट

नजर आने लगा था। दूसरे दिन प्रातःकाल मिस जोशी ने मेहमानों के नाम दावती कार्ड भेजे और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगी। मिस्टर आप्टे के सम्मान में पार्टी दी जा रही थी। मिस्टर जोहरी ने कार्ड देखा तो मुस्कुराए। अब्बा शेष जाल से बचकर कहां जाएंगे। मिस जोशी ने उसे फंसाने की यह अच्छी तरकीब निकाली। 4 ही बजे से मेहमान आने लगे। नगर के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, प्रधान समाचार पत्रों के संपादक अपनी अपनी महिलाओं के साथ आने लगे। मिस जोशी ने आज अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण निकाले हुए थे। जिधर निकल जाती थी मालूम होता था अरुण प्रकाश की छटा चली आ रही है। भवन में चारों तरफ से सुगंध की लपटें आ रही थी और मधुर संगीत की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। 5 बजते बजते मिस्टर जोहरी आ पहुंचे और मिस जोशी से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोले, जी चाहता है तुम्हारा हाथ चूम लो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये महाशय तुम्हारे पंजे से नहीं निकल सकते। सहसा आपटे लोहार के बालक की उंगली पकड़े हुए भवन में दाखिल हुए। वो पूरे फैशनेबल रईस बने हुए थे। बालक भी किसी रईस का लड़का मालूम होता था। आज आपटे को देखकर लोगों को विदित हुआ कि वो कितना सुंदर सजीला आदमी है। मुख से शौर्य टपक रहा था, पोर पोर से शिष्टता झलकती थी। मालूम होता था वो इसी समाज में पला है। लोग देख रहे थे कि वो कहीं चूके और तालियां बजाएं, पर आपटे मंजे हुए खिलाड़ी की भांति जो कदम उठाता था वो सदा हुआ, जो हाथ दिखलाता था वो जमा हुआ। मिस जोशी उसकी वाक चतुराई पर फूल उठती थी। सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गईं और अपने सारे वस्त्राभूषण उतार फेंके। उसके मुख से शुभ्र संकल्प का तेज निकल रहा था, मानो किसी देवता ने उसे वरदान दिया हो। उसने सजे हुए कमरे को घृणा के नेत्रों से देखा, अपने आभूषणों को पैर से ठुकरा दिया और एक मोटी साफ साड़ी पहनकर बाहर निकल आई। उसे इस नए वेश में देखकर सभी चकित हो गए। काया पलट कैसी? सहसा किसी की आंखों को विश्वास ना आया, किंतु मिस्टर जोहरी बगले बजाने लगे। मिस जोशी ने इसे फंसाने के लिए ये कोई नया स्वांग रचा है। मित्रों, आपको याद है परसों महाशय आपटे ने मुझे कितनी गालियां दी थी। ये महाशय खड़े हैं, आज मैं इन्हें उस दुर्व्यवहार का दंड देना चाहती हूं। मैं कल इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त रहस्यों को जान आई। मैं उन रहस्यों के खोलने में अब विलंब न करूंगी। आप लोग अधीर हो रहे होंगे, अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं कि ये महाशय पक्के विद्रोही हैं। मिस्टर जोहरी ने ताली बजाई और तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। मिस जोशी ने कहा, लेकिन राज के द्रोही नहीं, अन्याय के द्रोही, दमन के द्रोही, अभिमान के द्रोही। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मिस जोशी रुकी नहीं। महाशय आपटे ने गुप्त रूप से शस्त्र जमा किए हैं और गुप्त रूप से हत्याएं की हैं। मिस्टर जोहरी ने तालियां बजाई और तालियों का दोंगड़ा फिर बरस गया। मिस जोशी फिर बोली, लेकिन किसकी हत्या? दुख की, दरिद्रता की, प्रजा के कष्टों की, हर धर्मी की और अपने स्वार्थ की। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया। मिस जोशी फिर बोली, महाराज आपटे ने गुप्त रूप से डकैतियां की हैं और कर रहे हैं। अब की किसी ने ताली न बजाई। लोग सुनना चाहते थे कि देखें आगे क्या कहती हैं। उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ किया है, मेरा सब कुछ अपहरण कर लिया है, यहां तक कि अब मैं निराधार हूं और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई आश्रय नहीं। प्राणाधार, इस अबला को अपने चरणों में स्थान दीजिए, इसे डूबने से बचाइए। मैं जानती हूं आप मुझे निराश न करेंगे। ये कहते कहते वो जाकर आपटे के चरणों पर गिर पड़ी और सारी मंडली स्तंभित रह गई। 1 सप्ताह गुजर चुका था। आपटे पुलिस की हिरासत में थे। सारे प्रांत में हलचल मची हुई थी। रात के 9 बज गए थे।
मिस्टर जौहरी राजभवन में मेज पर बैठे हुए सो

0: रहे थे कि मिस जोशी को क्यों कर वापस लाएं। उसी दिन से उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसकी सूरत एक क्षण के लिए भी आंखों से न उतरती थी। वो सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसी दगा की, मैंने इसके लिए क्या कुछ न किया, इसकी कौन सी ऐसी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की, और इसने मुझसे बेवफाई की। नहीं, कभी नहीं, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सहसा कमरे का द्वार खुला और मिस जोशी ने प्रवेश किया। मिस्टर जौहरी हकबकाकर कुर्सी से उठकर खड़े हुए और सोचकर कि शायद मिस जोशी उधर से निराश होकर मेरे पास आई हैं, कुछ रूखे लेकिन नम्र भाव से बोले, आओ आओ बाला, तुम्हारी ही याद में बैठा था। मिस जोशी ने कहा, आप केवल जबान से कहते हैं। मिस्टर जौहरी बोले, क्या दिल चीर कर दिखाऊं? मिस जोशी ने कहा, प्रेम प्रतिकार नहीं करता, आपने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रखा है, यह प्रेम है क्या? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? अगर आप समझ रहे हैं कि इन शक्तियों के डर से मैं आपके शरण में आ जाऊंगी तो यह आपका भ्रम है। आपको अख्तियार है कि आप आपटे को काले पानी भेज दें, फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर ना होगा। मैं उनको अपना स्वामी समझती हूं, उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा उद्धार किया है। आप मुझे विषय के फंदों में फंसाते थे, मेरी आत्मा को कलुषित करते थे। कभी आपको यह ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी? आप मुझे आत्मशून्य समझते थे, लेकिन इस देव पुरुष ने अपनी निर्मल स्वच्छ आत्मा के आकर्षण से मुझे पहली ही मुलाकात में खींच लिया। मुझे एक सच्ची आस्था की जरूरत थी, वो मुझे मिल गई। मैं उनके वियोग में चाहे प्राण दे दूं पर आपके काम नहीं आ सकती। मिस्टर जौहरी ने कहा, मिस जोशी, प्रेम उदार नहीं होता, क्षमाशील नहीं होता। मेरे लिए तुम सर्वस्व हो जब तक मैं समझता हूं कि तुम मेरी हो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इसकी क्या चिंता कि तुम किस दशा में हो। मिस जोशी ने कहा, तो यह आपका अंतिम निश्चय है? मिस्टर जौहरी बोले, अगर मैं कह दूं कि हां तो? मिस जोशी ने पिस्तौल निकालकर कहा, तो पहले आपकी लाश जमीन पर पड़ी होगी और आपके बाद मेरी। ये कहकर मिस जोशी ने जौहरी की तरफ पिस्तौल तान दी। जौहरी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, क्या तुम मेरे लिए कभी इतना साहस कर सकती थी? कदापि नहीं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हें नहीं पा सकता। जाओ जाओ, तुम्हारा आपटे तुम्हें मुबारक हो, उस पर से अभियोग उठा लिया जाएगा। पवित्र प्रेम ही में यह साहस है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है। आपटे ने मुझे प्रेम के क्षेत्र में नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी पराजित कर दिया। सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन को बदल सकता है, आत्मा को जगा सकता है, अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है। यह आज सिद्ध हो गया।
1: सुनो कहानी के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का तीसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
2: सुनो कहानी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म धड़कन का दो गाना, युगल स्वर अलका याग्निक और सोनू निगम के, गीतकार समीर हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है जान, गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन आनंद मिलिंद की।

0: इस अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए अब सुनते हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में समीर के बोल, युगल स्वर आशा भोंसले और उदित नारायण के हैं। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: हम आपको बताना चाहेंगे कि विशेष जयमाला कार्यक्रम में कल संध्या 7 बजे आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया पर केंद्रित कार्यक्रम। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता है तेजश्री कांबले। याद रखें कल संध्या 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया पर केंद्रित होगी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम रिफ्यूजी, स्वर सोनू निगम और अलका याग्निक की। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजय लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
5: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और
6: परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

0: जल्दी बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahma Yugam and Kartik Aaryan for Chandu Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalist Mira

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली

बल्कि उनकी गिटार की बातें ज्यादा होंगी जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपिंदर

भूपिंदर सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपिंदर को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपिंदर की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपिंदर सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपिंदर को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सब के बीच भूपिंदर सिंह।

0: मुझे।
1: भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आर डी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 2 बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आर डी बर्मन से हुई, और उसके बाद आर डी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आर डी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया, बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्ण।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

आरडी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आर डी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना कविता अमृता प्रीतम

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपिंदर सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपिंदर सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विद धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाई देवव्रत मिश्रा। In tonight's national program of music, accompanying him on tabla was Prashant Mishra. Earlier recorded at Akashwani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन बाली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी बसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह

हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।